0: अनंत
1: मंथन जाप एक भगवंत
0: एको एक एक हर आप
1: पूरन पूरे व्याप
0: अनक विस्तार एक ते भय
1: एक रात राचत गए।

0: चरण कमल स्यों लाग गय प्रीत,
1: भगत करो प्रभु की नित नीत,
0: एक ओट एको आधार,
1: नानक मांगे नाम प्रभु सार,
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए,
1: हर रस पावे बिरला कोए,
0: जिन चाख्या से जन तिरपता ने।

0: जाने
1: सो क्यों बिसरे जिन सब कि छदिया
0: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखे
0: गुर प्रसाद को बिरला लाके
1: सो क्यों बिसरे जे बिकते काढे
0: जन्म जन्म का टूटा गाढे
1: गुर पूरे तत एह बुझाया
0: रब अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो एक काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो हर नाम जपावो
1: भगत पाय तरिए संसार
0: बिन भक्ति तन होसी चार
1: सर्व कल्याण सुख निधनाम
0: उड़ जाता है विश्राम
1: सगल दुख का होवत नाश
0: नानक नाम जपो गुंतास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ
0: मन तन अंतर सुहाओ
1: नेत्रोपेख दर्श दर्श सुख होए
0: मन भिक्षे सात चरण

0: कहीं न जाए
1: सरब समाए
0: प्रभु संत दीन दयाल
1: भगत चल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटाकृत प्रतपाल
0: आद पुरुष कारण करतार
1: भगत जना के प्राण धार
0: जो जो जपै सो होए पुनि।

0: नीच अजान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बड़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: बहु भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: परिश करनी शोभा तनवंत
1: हृदय बसे पूरन।

0: जब अकार एकच न दिसता
1: आप कौन तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: पैर विरोध की संग कमाद
0: जब इसका वरण चिन्ह न जापत
1: किसे व्यापत
0: जब आपन आप पार ब्रह्म
1: की सोवत परम
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: बंद मुकत को किसको गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुरको कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
1: तब शिव सकत कहो के ठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तर
1: तब कवन डर कवन कात डर
0: आपन चरत आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अब नासी सुख आपन आसन
1: है जन्म मरण को का विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
1: चितर गुपत किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
1: कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप ही अचर जा
1: नानक अपन रूप आप ही उपरजा
0: जय निर्मल पुरख पत होता
1: बिन मैल क्यों क्या होता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन अपमान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: जय चल छिदर लगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: किसे भूख कवन तृप्तावे
0: कर्ण करावण करने हार
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: कवन माय बाप मित्र सुत पाई
0: जब सर्व कला आपे पर बीन
1: वेद देव का को छीन
0: जब अपन आप उतार
1: सगन आप सगन कहा विचार
0: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
1: कौन कौन गई है छेरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
1: नानक अपनी गज जानो आप
0: जय अचल अछेद भेद समाया
1: किसे व्यापत माया
0: आपस को आप आदेश
1: गुण खाना ही प्रवेश
0: जय एक एक एक भगवंता।

0: विस्तार
1: जाति भावे सृष्टि उपाय
0: अपने समाये
1: तुम ते फिर नहीं किछ होए
0: सब जगत परोए
1: जाको प्रभ जियो आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् कविता
0: नानक सगल सृष्टि का जेता
1: जी जंत्र सबका कह हाथ
0: दीन दयाल नाथ को नाथ
1: जिस राके तिस कोए न मारे
0: सो मुआ जिस मनो बिसारे
1: तिस तज अवर कहा को जाए
0: सब सिरे एक निरंजन राय
1: जी की जुगत जाके सब हाथ
0: अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण धान बेअंत अपार
0: नानक दास सदा बलिहार
1: पूर्ण पूर्ण है दयाल
0: सब ऊपर हो मत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जान आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: व्रत पाल जी अनुभव पात
0: जो जो रसो तिसे त्यात
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मन्या
0: नानक इक जानिया
1: जन लागा हर एक कहनाए
0: इसकी आस न बिरथे जाए
1: सेवक को सेवा बने आई
0: हुकम बूझ परम पद पाई
1: इसते ऊपर नहीं विचार
0: जाके मन बसे निरंकार
1: बंधन तोर पे निर्वैर
0: अंधिन पूजे गुर के पैर
1: लोक सुखी ए पर लोक सोहेले
0: नानक हर

0: करखो मन माहे,
1: नानक बहुलावे जाए,
0: तिस्ते दूर कहा को जाए,
1: उबरे राखन हाथ्याए,
0: निर्भउ जपे सगल पौ मिटे,
1: रब कृपा ते प्राणी छुटे,
0: जिस पर राखे तिस नाही दुख,
1: नाम जपत मन होवत सुख,
0: चिंता जाए मिटे अहंकार,
1: तिस जन को कोई न पहुंचन हार,
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
1: नानक ताके कारज पूरा,
0: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट,
1: दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ,
0: चरण कमल जाके अनूप,
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
0: तन सेवा सेवक परमान,
1: अंतर जामे पुरख प्रदान,
0: जिस मन बसे सोहोत

0: हरे
1: संत संग अंतर प्रभ दीठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सगल समग्री एक अस्कट मा है
0: अनेक रंग नाना दृष्टाए
1: नवनिध अमृत प्रभ का नाम
0: देही में ऐसा विश्राम
1: सुन संवाद अनत नाद
0: पहन न जाए अचरज विस्माद
1: तिन देखिया जिसे आप दिखाए
0: नानक तीजन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: पकड़ प्याप रिया भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
1: अंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे
0: चार कुंड दिशे समाए
1: किस्ते पेन नहीं कोठाओ
0: ऊपर सानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमृत मैं देख
0: सस्य सूर्य खतर

सिप्त सवालियों जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किस करना।

सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बंद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानते चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानाई घट घट के पढ़ पढ़ की जानै जबद कर करा करता राव प्रजा तर तब देह पारा जब या कर कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तरस बहूँ।

प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहि भूपा मंड जज रज से तज कीनी ओत भुज खान बहर रत दीनी कहूँ पोल राजा हूँ बैठा कहूँ सिमट भव शंकर काठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप सजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संघरो दुर जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुख दुख तुह मरे पुरख जन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याई है ताकि काल निकट न है अच्छा होता है सब काला दुष्ट अरिष्टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुड़ छाल छुस कर न कोई

कोटिंद्र ब्रह्मा कितय रावसस करोर दलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेतो सुरग बात रघुबर कराओ सबरी पुरी समेत चौपाई जो यह कथा सुनाए अर्गा वै दुख पाप ते निकट ने आवै बिस्न भगत की ए फल होई आदि अछु सकै न कोई सम्मत 1755 हाड़वदी प्रथम सुख दावन तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा।

मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो। तेरी असमान कृपा तुमरी कर मैं न कहूं सब तोहे बखानियो। दोहरा

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावड़े आयां शब्द उतां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा।

कह मत। एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबाई बहु भेद कह। हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कारू। मैं न कहो सब तो ही बखाने दोहरा।

तुहार सगल द्वार को छाड़ के हो तुहार द्वार बाहि गह की लाज आसो गोविंद दास तुहारो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

का सदगुर पूरा ठाकुर गाया आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग जन के

ते कहो ये दो पाठ वखरे वखरे नहीं, कथा पाठ है। जी कहो जीव नू मनुख नू जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास टूट ना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। जाको आए सोई ब्याजो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पावो हो सुख सहज बहुर न होए गो।

अगर खाही। दीवान साहब कहने में ऐ गुरु क्या सिखा, जे तेरी ख्वाहिश है जे तू चाहना तो मेरे दिल दी अख विच चानना हो जाए। बराए रोशनी है चश्मे दिल अगर खाही, जे तू लोड़ना जे तू चाहना जे तेरी ख्वाहिश है कि मेरे दिल दी अख विच चानना हो जाए। दर बराबर ऊहे च कीमिया ना रस, जेड़ी गुरु नानक दे दर दे चरना दी धूड़ है ना, इस धूड़ वर्गा दुनिया ते होर कोई ममिया नहीं, इस धूड़ी वर्गा दुनिया दे तख्ते ते होर कोई सुरमा नहीं। जे दिल दी अख रोशन करनी चाहना ते बाबे नानक दी धूड़ मथे ते ला, ऐसा जबरदस्त असर कर दिए कि लाया सुरमा मथे ते चानना हो गया दिल में, और जूद असर बड़ी तेजी न। सब कहंदे ने माग मज्जन संग साधुआ धूड़ी करे स्नान, हर का नाम त्याए। माघ दे महीने दा उपदेश है ते माघ दा महीना किदा सफल होना, ते आउना हुंदा सुरती नाल, जपना हुंदा रसना नाल, फर्क है। जिहड़ा असीं सवेरे जप साहब दा पाठ करने आए ये जाप है, रात नूं रह रास दा पाठ करने आए जाप है। कईयां सज्जना ने नियम बनाया हुंदा पंज पत्रे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करके प्रसाद पानी छकना, ये जाप है। ते सुरत शब्द नाल जोड़ के कमर दी हड्डी सीधी करके अपने प्यारे प्रीतम दा ध्यान करके बैठे रहना, ते शब्द दी राही अभ्यास हुंदा रहना, ये त्याउना। जाप वाल ते कईयां सिखां दा ध्यान है गुरु दी कृपा नाल, पर त्याउण वाल ध्यान बड़े घट लोकां दा। हर का नाम त्याए, माघ दा महीना तां सफला होवेगा मन करके हरी परमात्मा दा नाम अरद हो, मन करके हरी परमात्मा नूं त्याओ, मन की लिव नाम नाल जोड़। हर का नाम त्याए सुन, तो फिर गुरुद्वारे आके कन्ना दे नाल कीर्तन सुन। ये गुरमत है जेड़ी असी नहीं करदे, ते करनी बड़ी जरूरी है। कन्ना दे नाल आके कीर्तन सुन, कथा सुन, एक मिंट तुहाडा जाया जरूर होवेगा, पर ध्यान दिओ। सिख पढ़दा सी सवेरे बाणी, ये दसवें पातशाह दे वेले दा वाकया है। उहदा किते मन जुड़ गया सिख दा, उहनूं स्वाद आ गया बाणी दा, ते तदे खबर जे रागियां सिंघां ने आ साज खोले, भई आसा दी वार दे कीर्तन दा वेला हो गया। सिख ने हथ जोड़े पे, सजणा मेरा मन गया टेक, मैनूं आ रहा बाणी दा स्वाद, ते अज आसा दी वार ना लाओ तां की है, मेरे रस विच बेरसी ना करो, मेनू आनंद लुट लैण दे। रागियां सिंघां ने जवाब दिता, प्यारे गुरु गोबिंद सिंह साहब दा हुक्म आ, कीर्तन जरूर होएगा, तेरा रस रहे या ना रहे। कीर्तन होया, अरदास होई, कथा हुई, सब कुछ होया, ते ओ नित नेम करन वाले सिख ने गुरु गोबिंद सिंह साहब कोल ये शिकायत की, महाराज मेरा जुड़िया होया सी मन बाणी दा पाठ करदिया, मैनू आ रहा सी स्वाद, ते मैं मिन्नत भी कीती, पर रागी सिंह नहीं मन्ने, इन्हें अपने साजवाज बजाए, मेरा रस कुरस हो गया। की इन रागियां सिंघां ने मनमत नहीं कीती? देखो किन्ना निग्गर सवाल है, इन रागियां ने कितने मनमत ते नहीं कीती? ते जेड़ा बचन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा सी, ओ भाई संतोख सिंह साहब ने सूरज प्रकाश विच लिखा, गुरुदेव कहन लगे यथा कूप की खेती होए,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੀਜ ਲੈ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿ ਗੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਜਥਾ ਕੂਪ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਏ, ਸਿੰਚਿਤ ਨੀਰ ਹਰੀ ਕਰ ਸੋਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਿੰਜ ਲੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਗਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਸਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੰਗਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਹੇ ਮੇਘ ਕੀ ਬਰਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਰਜਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ। ਜੇ ਕਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੀਂਹ ਟਿਕ ਕੇ ਵਰ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਕੋ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਨਿਹਾਲ, ਚਾਰ ਕੋ ਇੱਧਰ, ਚਾਰ ਇੱਧਰ, ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਧਰਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਆਏ ਮੇਘ ਕੀ ਵਰਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆ। 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਣ ਗਏ, 200 ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਗਿਆ, 2000 ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਕੀਰਤਨ ਆਏ ਮੇਘ ਕੀ ਬਰਖਾ, ਤੇ ਬਰਖਤ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹਰਖਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੋਰੀਆਂ 4 ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਬਡੰਗੀ 1/2 ਕਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਪਿਆ, ਅੰਨ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਰ। ਆਸਮਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਆਹੇ ਮੇਘ ਕੀ ਬਰਖਾ, ਤੇ ਬਰਖਤ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹਰਖਾ। ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਕੋ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਕੋ ਫਲ ਹੈ, ਝਰੀ ਲਾਏ ਜਿਮ ਬਰਖਤ ਜਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਡੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਸੁਣੋ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਕੋ ਫਲ ਹੈ, ਝਰੀ ਲਾਏ ਜਿਮ ਬਰਖਤ ਜਲ ਹੈ, ਥਿਮਕ ਥਿਮਕ ਬੂੰਦੀ ਜੇ ਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਨੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਧਰ ਹੈ। ਥਿਮਕ ਥਿਮਕ ਮੈਨੇ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ ਮੁਸਲਸਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਭਈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੜਾਇਆ, ਇਸ ਕੇ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ।
हमें धीरे गरो गह दारू पी इसमें है इसमें ने हृदय। अगले अखर पढ़ो ध्यान साफ हो जाएगा। कृपा करें जे अपनी ता गुर का शब्द कमा है। जे वाहिगुरु की कृपा होवे सिख गुरु का शब्द कमाउन लगता है ते शब्द की कमाई किथे होनी है हिरदे विच। जेड़े सिख ने अपने हिरदे विच शब्द की कमाई कर ली है ना ओदा हौमे दा रोग चला गया ओदा हौमे दा रोग टूट गया हौमे दे रोग को ओदा बचा हो गया। हुणे कुगी कथा विचों खुलनी है ना कीर्तन विचों नहीं। तुसी वेखोगे कई वारा बड़ा चूम चूम के असी पढ़ने दे जे के चौका कड़ी कार है उपर यार बैठे कूड़ यार है मत पिटा वे मैं तो पिटा ए अन्य साडा तन फिटा फेड़ करें मन जूठे चुली परेन ये बार नी सोच दी खंडन कर रहे ने ना हजूर। ते अखीर ते जाके आम सज्जन पाठ कर देने कौ नानक सच ते आइए सुच होवे तां सच पाइए। ते कोई आदमी तुहाडे उते सवाल ना करेगा ये तुहाडा गुरु करदा कि पहलियां तुकां विच सुच दा खंडन ते अखीरली तुक विच कहिंदा कौ नानक सच ते आइए सुच होवे तां सच पाइए। इको श्लोक विच सुच दा खंडन भी ते सुच दा मंडन भी ये की करदा रहा तुहाडा गुरु। ये सवाल करन दा मौका क्यों मिलिया किसे आदमी नूं मैं अज इस वास्ते पाठ दा विश्राम गलत हो गया। असी विश्राम दे दिता कौ नानक सच ते आइए सुच होवे तां सच पाइए। असी होवे उते विश्राम दे दिता अगले नूं सवाल करन दा मौका मिल गया ते विश्राम सी तां उते कौ नानक सच ते आइए सुच होवे तां। तू सुचा होवेगा ही तां तू सुचा होवेगा ही तद तू सुचा होवेगा तदों सच ते आइए। जदों सच्चे नूं सिमर लेंगा जे सच्चे नूं नहीं सिमरिया वी बारा पानी च नहाउंदा फिर तू सुचा नहीं हो सकदा। ये हुण कुंडी कथा विच खुलनी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच इक पाठ आउंदा है सब दिन के समरथ पंथ बिछले हां बल बल जाओ। रागियां सिंघां वास्ते ठुमरी दा अंग है और इस ठुमरी नूं आम तौर ते सियाने सुचजे रागी जेड़े ने ओ दस मात्रा विच गाउंदे सन। पर खैर मैनूं ते सुर सरगम दा ज्ञान नहीं मैं तुहाडा टाइम जाया क्यों करा। सब दिन के समरथ पंथ बिछले पंथ मैंने राह बिछले मैंने बीछल बीछल मैंने प्यारा प्यारे तो मुराद है वाहेगुरु। ते सब दिन के समरथ जेड़े आदमी वाहेगुरु दे राह उते तुरन विच सारा दिन समरथ है जेड़े सुबह तो लैके शाम तक वाहेगुरु वाहेगुरु जप सकदे ने जेड़े शाम तो लैके सुबह तक वाहेगुरु वाहेगुरु जप सकदे ने जेड़े 24 घंटे वाहेगुरु दे राह उते तुरन विच समरथ है सब दिन के समरथ पंथ बिछले हजूर कहंदे ने हां बल बल जाऊं। ऐसे पुरुषां तो मैं सदके जावां ऐसे पुरुषां तो मैं कुर्बान जावां हां बल बल जाऊं गावन भावन। देखो सारे सज्जन ध्यान करो गावन भावन हजूर कहंदे ने आ वाहेगुरु जेड़े तैनू गाउंदे ने ना गावन जेड़े तैनू गाउंदे ने ओ भावन ओ मैनू पाउंदे ने ओ मैनू चंगे लगदे ने ओ मैनू प्यारे लगदे ने। ते मेरे विद्या दाता कहन लगे बेटा एक बार फेर पढ़े मैं पढ़ दिता पे गावन भावन। ते कहन लगे भावन का मैं अर्थ है भवन भवन का अर्थ है घर जेड़े घर जेड़े मकान जेड़े मंदिर च बह के संत तेनू गाउंदे होण ओ मंदिर सोण गावन भावन संतन तोरे। मैं पढ़ दिता ओना अर्थ सुनाता कह लगे एक बार फिर पढ़ मैं फिर पढ़ता गावन भावन। ते मैनू अर्थ सुनाया कह लगे गावन आवागमन जमना ते मरना भावन मैंने नष्ट प्रष्ट
जिन्हा संतां ने तैनू गाया उन्हां दा जमना मरना नष्ट प्रस्ट हो गया। देखो जिन्हें तुसी सज्जन बैठे हो पंजाबी हो, मैं पंजाबी हां, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच इक बचन आया है, गुजरी जात गवार जां शौ पाए अपन। ये संस्कृत नहीं, उर्दू नहीं, फारसी नहीं, मोटी पंजाबी है। गुजरी जात गवार जां शौ पाए अपन। ते मेरे विद्यादाता ने अर्थ सुनाया, बेटा गुजरां दी गवार जात विचों राधे ने जन्म लिया, ते राधे ने गुजरां दी गवार जात विचों जन्म लैके जे कृष्ण प्राप्त कर लिया, जे उन्हें कृष्ण हासिल कर लिया, ते उची जात का मान करके मुचा नूं ता देण वाले तैनू ना रब मिलू। अर्थ सुना के हस पे कहण लगे, पर फिर पढ़, मैं पढ़ दिता गुजरी जात गवार। मैनू अर्थ सुनाया, कहण लगे, हे गवार, हे बेवकूफ, हे नलायक, हे जाहिल, गुजरी जात तेरी उम्र एवं ही गुजरती जाती हो, पंग दे पाड़े ही गुजरती जाती हो, नकम्मी गुजरती जाती हो, चंगी कदों होगी, जां शौ पाए अपना, या मैंने जदों तू अपना शौ पति परमात्मा पालेगा उदो चंगी हो जाएगी, नहीं तो गवारा बेवकूफ है एवं ही गुजर गई। मैं कह लगे, एक बार फिर पढ़, मैं पढ़ दिता गुजरी जात गवार जां शौ पाए अपना। मैनू अर्थ सुनाया, कहन लगा, बेटा जा मैंने जिना जिना ने अपना शौ पति परमात्मा पा लिया, गुजरी जात गवार, उन्हां दी जिहड़ी गवार कुणे वाली नीवी जात सी ओह गुजर गई, खत्म हो गई, मुक गई। हुण ते नीच जात हर जपतिया ऊतम पदवी पाए, पूछ हो बिदुर दासी सुता किशन उतरिया घर जिस जाए। रविदास तुम्हारी उस्तुत करे हर कीर्त निमखीक दाए, पतित जात उत्तम भया चार वरण पै पग आए। नाम देओ प्रीत लगी हर सेती लोग छिपा कहे बुलाए, खतरी ब्राह्मण पिछ दे छोड़े हर

0: साधु संतो महापुरुषो मन के यकीन कर लो, मैं धर्म के प्रचार लई, दुष्टों के प्रहार लई, दंता का नाश करन लई, सारा दे थां अपनी जान देन लई मैं अवतार आ रहा है और फिर वहां का ऐसा राज्य होता एक नाम में जो काम सर्व सामने न जाप कान को जपो न और साप न छपो कंठी न कंठ सुधार हो न मुद्र का सुधार कहो प्रभु जो भागो न आन कान राखो मैं जो कुछ वाहगुरु ने आख्या वो आखन जो मैनु वाहगुरु हुक्म दिता वो मैं लोगों को प्रचार करना किसी की आन कान नहीं सबा ने कैसा प्रचार किया कैसी लड़ लगियां दी लाज पाई कितना हजूर ने दान दिता इसी कौशल कहा ये कल के प्रकरण में तुसी सुनोगे अज दियां भुल्लां गलतियां दास जान के क्षमा करनियां गुरु रामदास पातशाह के दर दा कुकर जान के माफ करनियां बचन गुरु का जान के अंदर बसाना ताकि मेरा तुहाडा समा लेख विच पै जाए इन्हां अखरां नाल तुहाडे कोलों क्षमा चाहुंदा हां बड़े अदब नाल बड़े मान ते बड़ी इज्जत नाल ये टेप रिकॉर्डर रजिस्टर वगैरह लियाण वाले सज्जना नौजवानों की सेवा बड़े सत्कार नाल बेनती है चार मिनट पहला आया करो ताकि प्रकरण शुरू होए हुए विच तुहानू दखल देना ना पए ते मेरी बिरती इधर उधर ना जावे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह
1: Oh, yeah.

अपना है गरीब बंदवारा तुम्हारा। देख बहादुर जी लै देख एक तुहाडा ही सहारा रह गया, तुहाडा द्वारा गरीबा नु आसरा देने वाला है। तुहाथों बिना किने बाह नहीं फड़नी, तुहाथों बिना शादी किने इमदाद नहीं करनी। सानू मंदिर चों भी आवाज आई है तुम्हारी शरण ली है साहेब बचा लो। कृपा राम ने दुख रोया, महाराज चार कफेरे निराशे होके तुहाडी शरण ली है, तुहाडी चरण शरण आया जो जान जो बचा लो। तुम्हारी शरण ली है साहेब बचा लो, मुसीबत जो भारत पे आई है डालो। चार कफेरे जड़ी विपता जड़ी मुसीबत दी हनेरी चढ़ के आ गई है हिंदुस्तान उते, एदे कोलो किसे तरह बचाओ। तुम्हारी शरण ली है साहेब बचा लो, मुसीबत जो भारत में आई है डालो। भमर में है नाओ हमारी निकालो। तेग बहादुर जी साड़ी धर्म दी बेड़ी, साड़ी धर्म दी कश्ती बहरे तूफान फस गई है, तूफान विच गिर गई है, घूमन घेरिया च गिर गई है। इनू चप्पू लाने वाला कोई नहीं लभदा। भमर में है नाओ हमारी निकालो, निगाहे करम दाद खाहों पे डालो। मेर दी नजर कृपा दी नजर साडे उत्ते पाओ, असी तुहाडी मेहरबानी दे अधिकारी हां, असी लोड़कू हां, साडे लोड़वंदा उत्ते दया करो। तुम्हारी शरण ली है साहेब बचा लो, मुसीबत जो भारत पे आई है टालो। भंवर में है नाओ हमारी निकालो। एक बहादुर करण कारण कादर साहब सच्चे पातशाह जी है, ले दे के बस एक सहारा तुम्हारा, पना है गरीबां द्वारा तुम्हारा। तुहाडा आसरा रह गया, जो जान दो कोई कृपा करो, जो जान दो कोई चारा करो, जो जान दो साडा धर्म दा दीवा बुझ रहा है, किसे तरह इनू जगदा रख लो। अलोप हो चलिया धर्म, पटवई चलाउंदा कहिंदी है फरियाद सुनी साहिबा ने, ते जवाब दिता मैं चाहना तुसी सब माई पाईओ जवाब चेके रखो। तेग बहादुर करण कारण कादर ने जवाब दिता सी, ओ जवाब ए सी।

अपना परमात्मा हो। एक बहादुर जी महाराज ने आख्या प्यारे हो, जिन जमन तो लैके अज तक झूठ ना बोलिया हो, जिन जमन तो लैके अज तक एक सेकंड राम ना विसारिया हो, जिन जमन तो लैके अज तक कोई गुनाह ना किया हो, जो भी घंटे अपने मालिक की याद विच रहने वाला कोई ऐसा परमात्मा दिल्ली के चाननी चौंक विच जाके कुर्बान हो जाओ, दिल्ली के चाननी चौंक विच जाके अपनी शहादत दे दो, एहो जिहा परमात्मा, एहो जिहा महाबलि योद्धा, एहो जिहा आत्म चिंतन करने वाला, एहो जिहा कर्म योगी कर्मवीर कोई लभो अपनी कौम चो, जिस वेले ऐसी कुर्बानी हो जाएगी तुहाडे धर्म का दीवा सदा जगदा रहे, तुहाडी मुसीबत पर ला के उठ जाएगी, तुहानू चार कसेरे रोशनी ही रोशनी नजर आएगी, जाओ लभो। तेग बहादुर जी का जवाब सी कृपा राम मायूस हो गया, कितों लभी है, सतारा दे सतारा ब्राह्मण मायूस हो गए, किथे जाइए, जगन्नाथ पुरी तो हो आया कोई नहीं लभदा, हरिद्वार काशी पुरी ढूंढ मारी है कोई नहीं लभदा, ते साढ़े नौ वरे की उम्र विच गोविंद राय अपने साथियों नाल खेडदे सन, कन्न आपका पिता दे बचना वाल सी, अपने पिता का जवाब सुन के खेड़ छड़ के साथी छड़ के सरकारे आलम दे सामने आ गए गोविंद राय, ते पुछया पिता, परोपकारी पिता, सत्कार योग पिता, ये दरते आके रोंदिया धोंदिया ब्राह्मणा नूं की जवाब दिता जे, साहबा ने अपना जवाब दोहराया, साढ़े नौ वरे की उम्र विच अपने पिता जी नूं राय देंदा बच्चा, साढ़े अपने साढ़े नवा नवा वरिया दे कुड़ियां मुंडे वेखिया के भला अपने वो की जवाब देंदे ने पिता नूं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने की जवाब दिता, जिस वेले पिता ने दसिया ना भाई मैं आ जवाब दिता पंडिता नूं, उस वेले कहा दसवें गुरदेव ने दस्त बस्ता, जेड़े अजकल दे मुंडे मां नाल प्यो नाल लड़दे ने, मां प्यो दा आदर ही नहीं करदे, उन्हां नूं तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा जीवन पढ़ना चाहीदा, पर प्यो नाल गुफ्तगू किस तरह करी दी है, कहा दसवें गुरदेव ने दस्त बस्ता, दसवें बापू साढ़े नौ वरे दी उम्र विच हथ जोड़ के सिर चुका के प्रेम का पुतला बन के अपने पिता नाल गल्लां शुरू कीतियां, कहा दसवें गुरुदेव ने दस्त बस्ता, सुनो है पिता जी महाराज किमला, प्यो वास्ते लफ्ज किन्ने चंगे चाहिए ने, पिता वास्ते किन्ने सत्कार भरे शब्द वरतने चाहिए ने,

धर्म वीर आपसा कोई बंदा, फकत आप में है सदाकत का जलवा। वजूद वजूद मैंने बगैर, वजूद आपके स्वार्थों बिना, वजूद आपके कौन धर्मात्मा है, अगर कोई है तो वो परमात्मा है। पिताजी स्वार्थों बिना हो परमात्मा कौन, तुहाडे नालों बड़ा दर्जा किसे दा है जो केवल सतनाम वाहे गुरु है। वाहे गुरु तो हेठा उतर के दर्जा तुहाडा ही है। वजूद आपके कौन धर्मात्मा है, अगर कोई है तो वो परमात्मा है। इस वास्ते मैं अर्ज करना पिताजी, राहे हक में खुद जान अपनी लड़ाई, इन्हां नूं दसा ना पाओ, इन्हां नूं दूजियां द्वारियां ते ना रोलो, इन्हां नूं दूजियां दुकानां ना दसो। ये बाबे नानक दे हट उते आए ने, इन्हां दा दुख दूर करन वास्ते पिता जी अपनी जान लड़ा दिओ। राहे हक में खुद जान अपनी लड़ाए, शहादत का हमको नमूना दिखाए। साढ़े नौ वर की उम्र च कहन लगे पिता जी किदा शहीदी दे दिया, जे नमूना ते दसो ना सानू, दे के जाओ ना नमूना, पे ऐदा शहीदी करी दिया, खबर सानू भी करनी है।

आधार है। गोविंद सिंह पढ़ी गया उदासी संत ते सुन ले गए सारे श्रोते। जिस वे उन्हें समाप्ति की थी ते जेड़ा उस वे का मध्यस्थ सी ना मुसलमान, उसने फैसला यह सुनाया थी कि अज दे अवतारा दे कवि दरबार विचों सब तो अव्वल नंबर साहब गुरु गोविंद सिंह साहब का, सब तो श्रोमणी उत्तम बाणी साहब गुरु गोविंद सिंह साहब की है। अज श्री गुरु गोविंद सिंह साहब नु शस्त्र विद्या दिती गई, शास्त्र विद्या दिती गई। शास्त्र विद्या इन्हें हजूर निपुण सन, जिस वेले औरंगजेब नाल गली पैने ना ते कहन लगे औरंगजेब मन अकनू पाया फजाले पुरशे अकाल। औरंगजेब मन मैंने मैं, अकनू मैंने हुण, अफजाले मैंने मेर, अकाल मैंने वाहेगुरु, मैं हुण वाहेगुरु की मेर नाल वाहेगुरु की मेहरबानी नाल पुनम दे आपे आहे मैं लोहे दे पानी दा मीह बरा दिता। कोई अमृत बनाया सी ना खंडे नाल, भाई मैं लोहे दे पानी दा मीह बरा दिता। इस लोहे दे पानी दे मीह दे बाद हिंदुस्तान दा कोई शजर, हिंदुस्तान दा कोई पौधा, हिंदुस्तान दा कोई दरख्त हुण मुरझाया होया नहीं है। लिखदिया लिखदिया औरंगजेब नूं कहिंदे ने, ऐ औरंगजेब तुरा तरकता दी बमकरो रहा। फारसी किन्नी सलीस बोलदे सन आप, तुरा तरकता दी बमकरो रहा। तरकता दी मैंने हुंदा लुट कसुट, लुट मार, तैनू लुट मार चंगी लगदी है। तुरा तरकता दी बमकरो रहा, तैनू मकर करने बड़े चंगे लगदे ने, तैनू रियाकारियां हेरा फेरा करनियां बड़ियां चंगियां लगदियां ने। तू हेरा फेरी करके अपने प्यो नू कैद कर दिता भी मैं राजा बन जा, तू हेरा फेरी करके चाचा अपना मरवा छुटिया भी मैं राजा बन जा, तू हेरा फेरी करके अपने भरा नू हाथी दियां लत्तां नाल बन के दिल्ली दे बाजारां च कसीट कसीट के मार दिता भी मैं राजा बन जा। तुरा तर्क ता दी मकरो रहा, मरा चारा था दी बसिद को सफा। ते लिखदे लिखदे कहंदे ने, न देवत तुरा नाम औरंगजेब। औरंगजेब दे अर्थ ने तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी खूबसूरती। ते महाराज कहंदे ने, औरंगजेब आ जेड़ा नाम है ना भाई, तखत दी शोभा, तखत दी खूबसूरती, तखत दी सुंदरता, ये नाम तैनू फबदा है। न देवत तुरा नाम औरंगजेब, ये नाम तैनू टुकदा ही नहीं। जे औरंगजेब यावत फरेब, जेड़े तखत का शिंगार हुंदे ने ना, वो हेरा फेरिया नहीं करदे, वो धोखे नहीं करदे, वो दगेबाजियां नहीं करदे। ते तू जो कुछ पाया दगेबाजी विचों करके, तू तखत का शिंगार किन्ना होनो। यानी शस्त्र विद्या विच ते शास्त्र विद्या विच आप निपुण होए, पूरे संत सिपाही आप बने, ऐसा साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्होंने ये विद्या सब देनी सी। तेग बहादुर कहन लगे, सर तैनू दान देना, अजे तैनू शस्त्र और शास्त्र विद्या नहीं आई, ब्याह तेरा होना, कई जिम्मेदारियां मेरे सिर ते ने, जे मैं शहीद हो जा तू बेटा यतीम हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, सिर तो प्यो दा छाया चलिया जाएगा। हम जोली जे पला कदे लड़ पैन, किसे दूजे मुंडे नू दुख होवेगा ते प्यो कोल जाके रोवेगा, तेरा प्यो ही ना होवेगा, तू अपनी शिकायत किदे कोल करेगा बेटा। बड़ी वड्डी सोच सी, ते साढ़े नौ वरे दी उम्र विच अपने पिता दे सामने हाथ जोड़ के जवाब दिता सी कलगियां वाले बापू ने, पिता जे एक गुरु गोबिंद सिंह दे यतीम होया, जे एक गुरु गोबिंद सिंह दे पिता दे शहीद होया, जे एक गुरु गोबिंद सिंह दे सिर ते पिता दा साया उठ गया, मेरे भारत वर्ष दे मेरे लखां भरा यतीम होणों बच जाण। जे यखां मेरे भरा
ਇਸ ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਤੀਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਤੀਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ, ਚਲੇ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ,

रूप में समुद्र में कि 999 नदी पैंदी आ ओथे ही समा जांदी आ कदे ओदे जो उछाला नहीं आया मदी दासा उछाले विच ना आ उबाला ना खा दिल्ली लाहौर दी चक्कर ना लवा ओदा पाना मिठा करके मन भाई साहब नु आ रहे अगे रख दिता लहू वगया तंदीड़ियां चलियां जलाद ने आख्या अजय भी वेला ही काजी ने आख्या अजय भी वेला ही दारू दरमल हो सकेगा पढ़ ला कलमा बचाला अपनी जान और मंग तैनू की चाहिदा ते दीवान मती दास ने 70 भरिया नजरां नाल काजी और जलाद वाल वेख के आख्या मैनू चाहिदा मैनू जो कुछ चाहिदा मैं मंगना चाहना काजी तू खुद कह दिता जलाद ने खुद कह दिता पहला ते मैं नहीं थी मंगना हूं मैं मंगना चाहना हां पति दासा जो आखे मैं सो मिल जाए मुगल के दरबार में कोई घाटा नहीं दीवान मति दास ने निके निके दो अथरू फेर के काजी दे वल वेख के बड़ी इनकसारी नाल आख्या सी हीरे नहीं चाहिए काजी साहब मोती नीलम नहीं चाहिए मेनू चार बेगमा नहीं चाहदियां मेनू उचल के दर्जे नहीं चाहिए मेनू खान बहादुरी नहीं चाहिए फिर की चाहिए मती दास कहन लगा मेनू चाहिए जिन्ना चिर मेरे दम रहन जिन्ना चिर मेरे प्राण रहन जिन्ना चिर मैं जीऊंदा रहा जिन्ना चिर मेरिया अखां दी लो कम करदी रहे ओना चिर मेरा मुंह मेरे प्यारे गुरु वल रखना मेनू अंतले सुहासा तक मेरा गुरु नजर आउंदा रहे मैं अंत वेले तक अपने गुरु दे दर्शन करदा रहा मेनू गुरु के दीदारा तो वांझा ना करी चीर दिता गया दो तख्ते बना दिते गए डॉक्टर सर मोहम्मद लतीफ लिखदा भाई दुआ तख्तिया विचों कोई आवाज आउंदी सी समझ नहीं सी पैंदी भाई साहब भाई वीर सिंह ने भी तशरीह की भाई भाई साहब जप साहब का पाठ कर रहे सन अजे जप साहब का पाठ पूरा नहीं सी होया ओदू पहला ही चीर के दो तख्ते बना दिता दोवां तख्तियां ने रहिंदियां तुकां रहिंदे महावाक एक एक करके दोवां ने पढ़े अखीरला श्लोक आया दोवें तख्ते कठे हो गए मिलवी आवाज निकली जिन्नी नाम धियाया गए मशकत घाल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल कठे हो गए तख्ते फिर कोई आवाज नहीं आई भाई मती दास जी शहीद हो गए एक बहादुर जी के सामने भाई सती दास मती दास का दूजा भरा रूह विच वलेटिया कई मन रूह कठा करके ओदे विच वलेट के रूह नू अग लाई ओ अग कई दिन बलदी रही ते भाई सती दास जी उस रूह दी अग विच कई दिन रिझदे रहे कई दिन गलदे रहे लेकिन रूह विचों हाय रूह दी आवाज नहीं आई मैनू बचा लो मैनू रख लो कोई आवाज नहीं आई पाना मिठा करके गुरु के प्यारे ने मन्या भाई दयाला तेग बहादुर जी के सामने देर विच उबालिया गया भाई दयाला भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी के सगे भरास इनिया शहीदियां हो जान गए बावजूद तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह अडो मैं 1927 विच गया कलकत्ता 1927 विच मैं गया आसाम जोरहाट देवोई वगैरह कलकत्ते मैंने एक महापुरुष मिले उन्हां दा नाम सी स्वामी नरोत्तम दास वो आए गुरुद्वारा बड़ी संगत दो तीन दिन मेरी कथा सुनी ते एक दिन मैनूं बड़े प्यार नाल घर लै गए एक निकी जी पुस्तक मेरे सामने रखी बंगाली अखरां च लिखी गई ओदे उत्ते बड़ा साफ लिखिया होया सी श्री गुरु तेग बहादुर रो संक्षिप्त जीवन भाई तेग बहादुर जी का संखेप जीवन कहन लगा मैं तेनू इस करके

कोई वचन पढ़ो सरकार दा, कोई शब्द पढ़ो तेग बहादुर जी करण कारण कादर दा, ओदे विच करुणा रस है, ओदे विच वैराग है। एडा वैरागवान सारी जिंदगी ना हसया होवे ते ना ही हसया होवे, अंदाजा लाया जा सकदा, ना हसया होवे ते ना ही हसया होवे। जेड़े सरकार जदों बोलदे ने वैराग विच ही बोलदे ने, पर श्रीमान परम सत्कार योग भाई साहब भाई संतोख सिंह साहब ने लिखिया भाई हजूर एक बार हसे। महाराज कदों हसे? जदों शीए मसंद ने गोली चलाई ते आप गोली दे निशानों बाल बाल बच गए, उदों हसे? संतोख सिंह कहिंदा नहीं। फिर कदों हसे? जदों आप ढाके सन ते पटने विच सरदादे दे अवतार दा पता लगा, खबर पहुंची, उदों हसे? भाई संतोख सिंह कहिंदा नहीं। सवाल होया जे उदों भी नहीं हसे ते की? जदों गुरियाई दी गद्दी मिली, तिलक मिलिया, उदों हसे? भाई संतोख सिंह कहिंदा नहीं। सिख चक्र तो गए, गोली दे निशानों बचे ते नहीं हसे? काके दे अवतार दा सुनेहा मिलिया ते नहीं हसे? गुरियाई दी गद्दी मिल गई ते नहीं हसे? पर हसे कदों? ते भाई संतोख सिंह साहब कहिंदे ने, जदों सिखां वाले पिंजरे चों कढ़िया जल्लाद ने चमकदी 3 फुट दी पगौती अपने म्यान चों कढ़ी, तलवार लशकाई, पैंकड़े बदले, 4 फेरे दौड़िया घूमिया, ते साहब तेग बहादुर जी भाई संतोख सिंह दे ख्याल मुताबक सोची पै गए कि ये जल्लाद अपनी तलवार दी चमक दमक नाल मैनू मराऊ करना चाहुंदा, मैनू जेल करना चाहुंदा, ये मैनू डराउणा चाहुंदा, ये तलवार चमका के मेरे उते दा रोह पा के मैनू भय दिखा रहा। भाई संतोख सिंह साहब कहिंदे ने, उस तलवार दी चमक नू, उस तलवार दी तेजी नू, उस तलवार दी लिश्क पुश्क नू मिट्टी विच मिलाउण वास्ते तेग बहादुर महाराज ओदी चमक दमक नालों 4 गुणा वधेरे खिड़खिड़ा आके हसे, तलवार वल वेख के खुश हो गए। ते जल्लाद ने पुछया, महाराज इस तलवार ने बड़िया का खून पीता, जिदे सामने मैं लशकाई ओनू मैं रोंदा ही देखा, मेरी जिंदगी च अज पहला टाइम है तां तुहानू मैं तलवार दे सामने हसदिया वेख्या, ये ते तलवार तुहाडे 2 टुकड़े कर जाएगी, सर कलम कर देगी। हम ही को कतल करते हो और हम ही से पूछते हो फिर शहीद नाग बतलाना मेरी तलवार कैसी है, ये लग जाएगी तुहाडे गले विचों उड़ार पार, बड़ी तिखी है, बड़ी तेज है, इहदे वल वेख के हसदे हो, जिहदे सामने मैं तलवार लशकाई मैं ढाई मारदा वेख्या, बड़ी अलौकिक जी गल है कि तुसीं हसदे हो, डर नहीं क्यों? मौत नहीं जे तार हित कर दी, 2 टुकड़े हो जाण दा कोई तुहानू ख्याल नहीं, कोई चिंता नहीं। ते गरीब नवाज कहण लगे, जल्लादा जेड़े कॉलेज विच मैं पढ़िया ना, उस कॉलेज के प्रिंसीपल ने वड्डे दरवाजे के सामने वड्डा सारा एक माटो लिख के लाया सी, जिदन मैं उस कॉलेज के अंदर दाखिल होया सब तो पहला मैं वो माटो पढ़िया।

आस रखनी चाहिए है कि जिस पड़ाव ते मैं तुहानू छड़ के लिया तुसी इहनू याद रखोगे ते बाकी दी लंबी कथा जिहड़ी रह गई है वो पढ़ के तुहाडे सामने बयान करन दा यतन करांगा। मैनू प्रसन्नता हुई है कि तुहाडी गिनती सतगुरां दी कृपा नाल अगे नालों वधेरे है और तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दा दिता होया दान ऐन प्यार नाल पढ़ना ते सुनना चाहुंदे हो। अज मैं दूसरा दिन इस मजमून वास्ते खर्च कीता है, इसे छड़ चलिया हां कि इस तरह तेग बहादुर जी महाराज शहीद हो गए ने, शीश अपना उथे पिया है, घर भी उथे पिया है, हनेरी वगदी है, तूफान आया होया, लखी छावन जा रहे दे गड्ढे भी आ रहे ने, अगे की होया ये पढ़ के तुहाडी सेवा विच निरूपण करन दा निमाणा जिहा यतन करांगा। अज दीआं भुल्लां गलतियां धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दे दर दा कूकर जान के माफ करनियां, गुरु का भजन अमृत जान के अंदर वसाउणा ताकि मेरा तुहाडा समां लेखे विच पै लिया।

नरवाणे नरदई उच्चर जलाद कपी बादशाह जाम धर्म राजा नरक जिस जिस मनुख के अंदर किसे चीज का डर ना हो किसे चीज का भय ना हो जो नर दुख में दुख नहीं मन सुख समय हो और भय नहीं जानते कंचन माटी मन जेड़ा मनुख सोने नू ते मिट्टी नू समान ही समझदा हो सोने ते मिट्टी नू जेड़ा मनुख इको जिहा समझदा ए लक्षण ध्यान कर रहे ने विशेष अग बालन दे कारत कर रहे ने उस मनुख दी जिस मनुख दे विच वाहिगुरू विशेष तौर ते नजर आ सकदा कंचन माटी मन ए गुण बयान कर रहे जो नर दुख में दुख न मन सुख सने हो और भय नहीं जानते कंचन माटी मन न निंदा जिस भी दिन रात भय को निंदा करता रहे जालम बकवास बकदा रहे जबान दराजी करता रहे ते ओदी निंदा सुनदा भी रहे मां पुरुष लेकिन ओदी निंदा सुन के ते रजा जिना गुस्सा ना करे क्रोध ना करे बदवा न ले न निंदा न उस्तत जाके ते जे कोई उस्तत करने वाला आ जाए तारीफ करने वाला आ जाए करन लग पे तारीफ ते ओनु सुन के फुल के कुप्पा ना होवे निंदा के उस्तत नु नी को जे है जाने न निंदा न उस्तत जाके न मान अभिमान जे किते मान होया सत्कार होया जलूस निकलिया ते आकड़े ना अभिमान कदे नेड़े ही ना आवे तकबर कदे नेड़े ही ना आवे खुदी दी हवा ना जिन्नू लगी हुई होवे अपने आप नू कुछ समझदा ही ना होवे सबो कुछ अपने करतार नू जानदा होवे नह निंदा नह उस्तत जाके नह माने अभिमाना ते जिदे विच ए गुणिया न पे हरख सोग तेरे नियारो हरख मैंने खुशी सोग मैंने गमी मकान बना लिए ते खुशी हुंदी जे ढह जाए ते गमी हुंदी काका जम पे ते खुशी हुंदी है वाहिगुरु ना करे काके दे प्राण निकल जाण ते गमी हुंदी है काके दा व्याह होवे ते बड़े चा मल्हार दे गीत गाई दे ने वाहिगुरु ना करे काका अखियां मीट जाए वहन पैन लग पैंदे ने पर जेड़ा आदमी काके दे जमया भी ओहो जिहा ही रहे ते काके दे मोया भी ओहो जिहा ही रहे ना जमण वेले भंगड़ा पावे ते ना मरण वेले गैण पावे ऐसा कोई मनुख है जिहदी हजूर कारत कर रहे ने ना निंदा ना उस्तत जाके ना मान अभिमान हरख सोग ते रहे नियारो ना मान अभिमान आसा मन सा सगल त्यागे कोई आसा ना रखे मेनु स्वर्ग मिल जाए मेनु मुक्ति मिल जाए मेनु चार पदार्थ मिल जाए मेनु काम धेन गाय मिल जाए मेरा घर सुनिया मेनु काका लभ जाए कोई आस ना रखे आसा मन सा सगल त्यागे जग तेरे निराशा निराशा मैंने निर्लेप निरिक्षित निर्माण जिन्हों संसार का कोई मोह अपनी चाली से पसार न सके जग तेरे निराशा काम क्रोध जे परसे न जिन्हों काम ते क्रोध कदे छू भी न सके काम ते क्रोध जिदे नेड़े ना फटक सके हुण वेखण वाली है गल लभण वाली है गल सोचना पैना है तो ये काम क्रोध कोलों कौन बचा किदे केड़ा ऐसा पुरुष है जिदे उते इन्हां दा वार नहीं चलिया मेरे हिंदुस्तान विच इक कौम होई है उन्हां दा नां सी क्रीचक वो सौ भरा सन मेरे हिंदुस्तान के इतिहास विच लिखिया उन्हां दे खून विच कोई ऐसी बरकत थी वे जिथे क्रीचक दे खून दा एक कतरा डिग पै उथे एक होर क्रीचक पैदा हो जांदा जे कोई आदमी जालम आके किसे क्रीचक नू कतल करदा है अगर ओदे चों सौ कतरा खून दा डिगा है ते सौ क्रीचक होर जम पैंदा सी मारिया एक पैदा हो गया सौ